0: भागवई पेली हिरेला योग बापे नवरा ठरिवला योग बापे नवरा ठरिवला
1: ठरिवला नवरा
0: कैसे तोंडाला

0: रब हमारा।
1: अरे भाई, अपना हाल कभी सुधरेगा या पतला ही रहेगा?
0: पतला है हाल अपना, लेकिन लहू है गाढ़ा, पौलाद से बना है हर नौजवान।